0: मुजफ्फर को महाबत अपनी, जिस कदर इसके मुकद्दर में है सब मिल जाए।
1: आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।

0: और न अंधों को गुमराही से निकाल कर रास्ता दिखा सकते हो। तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं और वो फर्मा बरदार हो जाते हैं।
1: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ

0: क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया है कि उसमें आराम करें और दिन को रोशन बनाया है कि इसमें काम करें, बेशक इसमें मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं।
1: وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ

0: और जिस रोज सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों और जो जमीन में हैं सब घबरा उठेंगे, मगर वो जिसे खुदा चाहे और सब उसके पास आजिज होकर चले आएंगे।
1: وَتَوَلْ جِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ

और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया और हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं।

मूसा वहां से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है, और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार मुझे जालिम लोगों से नजात दे।

मैं तुम्हारा अपने सिवा किसी को खुदा नहीं जानता, तो हामान मेरे लिए गारे को आग लगाकर ईंटें पका दो, फिर एक ऊंचा महल बना दो, ताकि मैं मूसा के खुदा की तरफ चढ़ जाऊं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूं।

0: और जब कुरान उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए, बेशक वो हमारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है और हम तो इससे पहले के हुक्म बरदार हैं।
1: उलाइका युतौना अजर।

उन लोगों को दुगना बदला दिया जाएगा क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं।

और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे आमाल और तुमको तुम्हारे आमाल, तुमको सलाम, हम जाहिलों के खासगार नहीं हैं।

और जो चीज तुमको दी गई है वो दुनिया की जिंदगी का फायदा और उसकी जीनत है, और जो खुदा के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाली है, क्या तुम समझते नहीं।

0: और वो लोग जो कल उसके रुतबे की तमन्ना करते थे सुबह को कहने लगे, हाय श्यामत, खुदा ही तो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर खुदा हम पर एहसान न करता तो हमें भी धंसा देता। हाय खराबी, काफिर नजात नहीं पा सकते।
1: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ

क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो ख्याल ये करते हैं बुरा है।

सूझबूझ के मालिक हैं और हमारे सबसे बाबरकत पासबान हैं। उन्होंने कहा, अच्छा तो सुनो, अब तुम्हारे मर्दों और औरतों से मेरी बातचीत हराम है जब तक कि तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाओ। उनकी इस बात का ये असर हुआ कि शाम होते ही इस कबीले का कोई भी मर्द और कोई भी औरत ऐसी न बची जो मुसलमान न हो गई हो। सिर्फ एक आदमी जिसका नाम उसीरम था, उसका इस्लाम जंगे अहद तक मौखर हुआ। फिर अहद के दिन इसने इस्लाम कबूल किया और जंग में लड़ता हुआ काम आ गया। उसने अभी अल्लाह के लिए एक सजदा भी न किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने थोड़ा अमल किया और ज्यादा अजर पाया। हजरत मुसब रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत असद रजी अल्लाह तआला अन्हु ही के घर मुकीम रहकर इस्लाम की तबलीग करते रहे, यहाँ तक के अंसार का कोई घर न बाकी बचा जिसमें चंद मर्द और औरतें मुसलमान न हो चुकी हों। सिर्फ बनी उमैया बिन जैद और खत्मा और वाइल के मकानात बाकी रह गए थे। मशहूर शायर कैस बिन असलत उन्हीं का आदमी था और ये लोग उसी की बात मानते थे। इस शायर ने उन्हें जंगे खंदक तक इस्लाम से रोक रखा। बहरहाल अगले मौसम हज यानी 13वें साल नबूवत का मौसम हज आने से पहले हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कामयाबी की बिशारतें लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्का तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबाइल यसरब के हालात, इनकी जंगी और दिफाई सलाहियतों और खैर की लियाकतों की तफसीलात सुनाई। दूसरी बैत अकबा। नबूवत के 13वें साल मौसम हज में यसरब के 70 से ज्यादा मुसलमान फरीजा हज की अदायगी के लिए मक्का तशरीफ लाए। ये अपनी कौम के मुशरिक हाजियों में शामिल होकर आए थे और अभी यसरब ही में थे या मक्का के रास्ते ही में थे। आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि हम कब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं ही मक्का के पहाड़ों में चक्कर काटते, ठोकरे खाते और खौफजदा किए जाते छोड़े रखेंगे। फिर जब ये मुसलमान मक्का पहुंच गए तो दर पर्दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिलसिला और राबता शुरू किया और आखिरकार इस बात पर इत्तफाक हो गया कि दोनों फरीक अयाम तशरीक के दरमियानी दिन 12 जिलहज्जा को मना में जमराउला यानी जमराकबा के पास जो घाटी है इसी में जमा हो और ये इज्तमा रात की तारीकी में बिल्कुल खुफिया तरीके पर हो। आइए अब इस तारीखी इज्तमा के अहवाल अंसार के एक कायद की जुबानी सुने कि यही वो इज्तमा है जिसने इस्लाम वबत परस्ती की जंग में रफ्तार जमाना का रुख मोड़ दिया। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग हज के लिए निकले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्याम तशरीक के दरमियानी रोज अकबा में मुलाकात तय हुई और बिलाखिर वो रात आ गई जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात तय थी। हमारे साथ हमारे एक मोअज्जज़ सरदार अब्दुल्ला बिन हराम भी थे जो अभी इस्लाम न लाए थे। हमने उनको साथ ले लिया था वरना हमारे साथ हमारी कौम के जो मुशरिकीन थे हम उनसे अपना सारा मामला खुफिया रखते थे। मगर हमने अब्दुल्ला बिन हराम से बातचीत की और कहा कि ऐ अबू जाबिर, आप हमारे एक मोअज्जज़ और शरीफ सरबरा हैं और हम आपको आपकी मौजूदा हालत से निकालना चाहते हैं ताकि आप कल कला को आग का ईंधन न बन जाएं। उसके बाद हमने उन्हें इस्लाम की दावत दी और बतलाया कि आज अकबा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात तय है। उन्होंने इस्लाम कबूल कराया और हमारे साथ अकबा में तशरीफ ले गए और नकीब भी मुकर्रर हुए। हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु वाकये की तफसीलात बयान करते हुए फरमाते हैं, हम लोग हस्बे दस्तूर उस रात अपनी कौम के हमरा अपने डेरों में सोए, लेकिन जब तिहाई रात गुजर गई तो अपने डेरों से निकल निकल कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तयशुदा मकाम पर जा पहुंचे। हम उस तरह चुपके चुपके दुबक कर निकलते थे जैसे चिड़िया घोंसले से सुकड़ कर निकलती है, यहाँ तक कि हम सब अकबा में जमा हो गए। हमारी कुल तादाद 75 थी, 73 मर्द और 2 औरतें। एक उम्मे अमारा थी जो कबीला बनू माजिन से ताल्लुक रखती थी और दूसरी उम्मे मनी अस्मा बिनते अमरू थी जिनका ताल्लुक कबीला बनू सलमा से था। हम सब घाटी में जमा होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगे और आखिर वो लम्हा आ ही गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This
2: is 92.6.
3: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. अच्छा निशा, एज एन इंस्ट्रक्टर, राइट, एज अ टीचर ऑफ लिटरेचर, आप से मैं ज़रूर इस बारे में बिल्ड करना चाहूँगी कि हाउ वुड यू एडवाइस योर स्टूडेंट्स, राइट, बिकॉज आई थिंक यू आर स्टूडेंट काउंसलर एज वेल. हाउ वुड यू एडवाइस स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप अगेंस्ट गॉसिप, और आप इससे मतलब कैसे उनकी ग्रूमिंग कर सकती हैं फॉर अ बेटर कैरेक्टर, और टू कर्टेल इट, टू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ इट, और वैसे भी जनरली आप क्या समझते हैं कि टीचर्स इस तरह का एनवायरनमेंट कैसे फॉस्टर कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, टू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर द स्टूडेंट्स.
4: So how can teachers foster this environment? Teachers बहुत कुछ कर सकते हैं अपने एंड पे. और
3: अगर वो करना चाहें तो
4: obviously. और मेरे ख्याल में वो इसकी शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं कि you know, they can become role models themselves. And how do they do that? They can do this by demonstrating integrity and fairness.
3: Charity begins at home.
4: And professionalism to cap it all.
3: Of course.
4: And so what does that mean? So it means that you do not do slander.
3: Oh, yes.
4: You don't spread toxic or negative remarks about colleagues, and you just simply practice the values that you wish to instill in your students. राइट, सो जब आप एक दफ़ा इस चीज़ को बिल्ड कर लें, एक फाउंडेशन आप बिल्ड कर लें, तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि यू कैन सेट अप एडिशनल प्रैक्टिसेस. सो यू नो, यू कैन सेट अप ए क्लियर, यू नो, यू कैन सेट अप क्लियर ग्राउंड रूल्स अर्ली ऑन. सो फॉर एग्जांपल, इनकरेज लिसनिंग विदाउट इंटरप्शन इन द क्लासरूम,
3: राइट,
4: फ्रेम डिसएग्रीमेंट एज डायलॉग एंड नॉट डिबेट, एंड यू कैन एम्फसाइज रिस्पेक्ट फॉर ऑल व्यू पॉइंट्स. And you can also diversify the syllabus, including authors from different cultures and genders and political positions.
3: Oh, right? Wow.
4: So that way, students would be more open to interpretation and they would be sensitive to varied points of view.
3: I think it's a lovely advice and some beautiful words that you have given. Aapne ek baat ki ke they should practice the values.
4: Exactly.
3: And I hope they realize there are some things.
4: So you teach by example, in other words.
3: Yeah, yeah. And I think ke teaching, uski essence ko, it needs to be recognized by the teacher himself first, right? So just like you have mentioned, ke unless we realize it on our own and practice it ourselves, we won't be able to impart it to the others, okay. Right? I think it had been a lovely discussion, और मुझे बहुत मजा आया आपके साथ इस बारे में बात करके.
4: मुझे भी बहुत अच्छा लगा.
3: मेरा ख्याल है ये एक पहला छोटा सा स्टेप था that we have initiated into character building, और हमने एक छोटी सी चीज को डिस्कस करना शुरू किया जो लगती बहुत छोटी है, लेकिन असल में इट्स टू मॉन्स्ट्रस एंड टू बिग टू बी हैंडल्ड दैट वे. Or mera khayal hai ki nobody would have unpacked it the way you have done, Ayesha, connecting it with examples from literature. And that also speaks about the importance of literature. You know, literature has been there narrating to us stories for the sake of extracting moral lessons from it, right? Anyways, I'm running short of time. We need to conclude it. And I would just end it. Okay, Ayesha, it had been lovely to have you here discussing these wonderful things and imparting wisdom to the students and every listener who is a part of the discussion. Thank you for your time. And I look forward anxiously to the other episodes in the series aimed at character building. Thank you very much for being a part of Safe Spaces, Ayesha. I'll see you next time, definitely. Thank you, everyone who has been listening to us. Thank you for your time. If you have any questions or queries, you can go to the page and type the questions. Take good care of yourself. Aap sun rahe the FM 92.6 UCP ki duniya.

मेरे कारवां हम रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे असल दास्तां।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: admissions open for fall 2026. Explore the diverse degree programs offered by Faculty of Media and Mass Communication at University of Central Punjab. We are offering BS Media and Communication Studies, BFA Visual Communication Design, BFA Visual Art. Contact us at 080-000-827 or apply on admissions@ucp.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: सूफी सिंग्स हु दैट विच इज दैट विच वाज दैट विच विल बी।
3: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

नूरजहां ने 1000 फिल्मों के लिए गीत गाए जिनमें से ज्यादातर मकबूले आम हुए। नस सदी से जायद अरसा तक मौसीकी की सल्तनत और करोड़ों सामईन के दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करने वाली मलका तरन्नुम नूरजहां की शख्सियत के हवाले से एशियाई लेजेंड दिलीप कुमार की अहलिया और माजी की मारूफ अदाकारा सायरा बानो का कहना है, मलका तरन्नुम नूरजहां ने प्लेबैक सिंगिंग में जो स्लूबो अंदाज वजा किया वो फिल्मी मौसीकी का लाजमी जुज बन गया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार अक्सर ये बात करते हुए मलका तरन्नुम का तस्करा करते हैं तो कहते हैं कि दुनिया में फिल्म और म्यूजिक रिकॉर्डिंग की इजादात को मुतारिफ हुए अभी थोड़ा अरसा हुआ था, इसलिए इस तकनीक को सीखने के लिए ना तो इंस्टीट्यूशन से और ना ही फनकारों की ट्रेनिंग का अहतमाम। हैरत अंगेज अमर ये था कि नूरजहां ने इस दौर की जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत हासिल किए बगैर जो काम किया वो आज भी अनोखा और मुनफरिद है।

मेरा माही चैन शरीरा, जिंदा है लाहौर, पाइंदा है लाहौर। ए पुत्र हटा दे नई विगदे, की लब दे फिरी बाजार कुड़े। मलका तरुण ने अपने मिली नख्मों से वतन की हिफाजत करती हुई गयूर कौम को पैगाम दिया, सियालकोट तू जिंदा रहेगा, तू जिंदा रहेगा, मेरा सोहना शहर कसूर नहीं। रब दिया रखा, ये वो गीत थे जिन्होंने पाक अफवाज के हौसलों और जज्बों को बढ़ा दिया।

1986 में जब वो शुमाली अमेरिका के दौरे पर थी तो इन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर्स ने एंजाइना की तकलीफ बताई, जिसके बाद इनकी सर्जरी की गई। सन 2000 में कराची में इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। यूं ये दिलकश आवाज 23 दिसंबर सन 2000 को अपनी महक यहीं छोड़कर हमसे हमेशा के लिए दूर हो गई।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

उस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था, थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव ये वीरान तो न था।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।